0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames, Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों साथियों, यह है जलसा फिजी रेडियो और आशा है कि जुग्गी तभी साहल ने प्ले किया आपको पसंद आया हुआ होगा. और साहल, व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज दिस इज नाउ आवर विंटर. जी हाँ. तो कैसा लग रहा है विंटर की तरह, आपको लग रहा है कि आपको लगता है कि और ठंड होना चाहिए?
2: आई डोंट नो, आई मीन लास्ट ईयर भी देखो, आई थिंक इवन समर इज वेरी अप एंड डाउन एज वेल. So, summer में ठंड पड़ रही है, winter में गर्म पड़ रही है.
1: जी हाँ, though we are feeling cold, लेकिन कहा जाता है कि the winter is not cold enough, क्योंकि it is affecting growing of certain fruits वगैरह ना, जो flowering.
2: हाँ, it's a warmer winter.
1: हाँ,
2: वही तो. It's global warming.
1: जी हाँ, but we are not. I'm personally not complaining. मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, मैंने news में सुना था, but I'm not complaining. Warmer winter is fine with me.
2: I think generally the average temperature of winter in New Zealand, I think last 2 years has been above what it usually used to be.
1: तो आपको क्या, आपका जो prediction क्या लग रहा है, snow होगा इस साल कि we have to wait?
2: I think the southern Alps में snow हो गया है already.
1: हाँ.
2: एंड क्राइसिस में यूजली स्नो नहीं होता है, क्राइसिस में फ्रोस्ट होता है, पर स्नो तभी होता है जब पोलर ब्लास्ट होता है. इवन इफ यू गो लाइक आवर इनलैंड देन यू विल गेट स्नो.
1: तो वो तो क्राइसिस सेंट्रल में लग रहा है स्नो होगा नहीं होगा?
2: ना, वो तो वही होगा अनलेस यू गेट अ पोलर ब्लास्ट.
1: ओके, हां ठीक है. सो टेक्निकली स्पीकिंग साहिल इज सेइंग इट कैन स्नो.
2: तो इट हैज नॉट इन पास्ट बेस्ट हुआ है व्हेन पोलर ब्लास्ट डेज होता है, बट इट ओनली हैपेंस जब पोलर ब्लास्ट होता है.
1: चलो आप हमें यह गीत सुनाओ, फिर हम और बात करते हैं.

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames, Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ, तो सतीश जलसा फिजी रेडियो और समय पे अगर देखा जाए तो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड देयर, जब हमें आपसे अलविदा लेना पड़ता है इस वादे के साथ में कि नेक्स्ट टाइम इसी तरह जुड़ जाएंगे फ्रॉम 5 to 6 PM. सो जुड़ जाइए और साथ साथ हमारा जो टैलेंट सीरीज भी आ रहा है 16th of July, देन यू कैन सी दैट ऑन फेसबुक लाइव. और जितने भी कलाकार आपकी बार आए हैं उनको हम ऑल द बेस्ट कहेंगे और साथ साथ अपने सभी स्पॉन्सर्स को हम शुक्रिया करना चाहेंगे जिसके बदौलत ये हम जो सीरीज कर रहे हैं. तो चलो, काफ़ी समय हो चुका, हम आपके लिए लास्ट गीत बजाते थे, उसके बाद में फिर मिलेंगे किसी और दिन. यहाँ पे मिलेंगे प्लेन से स्टूडियो पे, अदरवाइज जैसे हम वीडियोस लाते रहते हैं, इफ वी हैव सम न्यूज, कुछ ऐसा कुछ हमारे हाथ में आता है जिसे हम कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके, वी विल कम लाइव. एट द सेम टाइम वी आर हैविंग अवर KYC सेगमेंट, सो नो योर कैंडिडेट्स, वो वीडियोस भी हम डालते रहेंगे सो दैट यू कैन नो योर कैंडिडेट्स, एंड बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन ईयर. तो चलो, शुक्रिया, शुभरात्रि, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ में.
1: ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोलियों में छुपाकर